0: एफओ मेगा हर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्ण सार एफएम
0: 94 मेगा हर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै देश।

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै देश।

0: चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
1: ए बात ठीक कैलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
0: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
1: ए ओसिनो कल से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रहा
0: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717। कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
2: हाम्रै सहर नेपालगञ्जमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आइरहेको नेपालगञ्ज नेशनल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ। यस अस्पतालमा दैनिक रूपमा विभिन्न विशेषज्ञहरूद्वारा ओपिडी सेवा हुनुका साथै विभिन्न सेवाहरू भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
3: हजुर, हाम्रो यहाँ सर्जरी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्रसूति तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नसा तथा हड्डी रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, मस्तिष्क तथा मानसिक सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, छाला रोग सम्बन्धी उपचार, छाला रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नाक कान घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्याथोलोजी ल्याब सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे तथा अन्य सम्पूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालका साथै प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पतालबाट सुगर र थाइरोइडको उपचारका लागि डाक्टर सुमन बराल आउने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ।
2: नोट, यस अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरूद्वारा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार निःशुल्क ओपिडी सेवा हुनुका साथै जाँचहरूमा 20% विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
3: सम्पर्क नम्बर 081-536-465 98-239-80-665 र 98-482-80-465 नेपालगञ्ज नेसनल अस्पताल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
4: यो कृष्ण सार एफएम
5: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: टाइम टेक
2: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Toilet Pony, yeah. Extreme energy drink.
1: ओहो आज दाई हो नै मजा लागतो मजा से दवाई करेला कहतो
2: ये तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
1: ए बात तो ठीक है कहिलो साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
2: वहां ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहां कई जाइत
1: ए ओसिनो कला से उहै जाइ मन फे ढुक्क हुइना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा
1: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ लैजिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुइना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कैके उपचार हुईट वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाएत जस्तेक BTE CIC RIC जैसिन मशीन फे वहाँ मिलत
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
1: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस्तक सर्जरी के सकु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सकु उपचार नसा व हड्डी रोग के सकु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सकु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सकु उपचार सेवा देती आइल बा
1: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सकु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सब कुछ सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-239-80-665 वो 98-482-80-465

तुहार आँखी से गिरल मोती के हर दाना टरो के नहीं से कम, बस तुहार में आपन है समियादे से कम। यदि हुई कले से तुहार सबको करिए दिन है शायद में धर के, मैं तुहार संगे जिंदगी बिताई ना अनुमति मांगत हूं। तुहार निर्णय के अस्से में राम साइकिल वाला बंटू।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: California. Extreme energy drink.
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो एक साथ तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।
3: वाओ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेज में भर्ना हुने होला?
4: ल है बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगंज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
4: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
3: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
2: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
3: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित। ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98-580-36-577, 98-580-28-195 र 98-580-36-811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्रामवा सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आए थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किराऊ मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार कार्यक्रम चना जोर गरम सुनने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोताई प्यारा से कार्यक्रम लेके आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी पराबिंग में जो सदा साथी रहे आज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो श्रोता आप लोग सुना जाते हैं आपे के प्रिय रेडियो किसी सारे एफएम 94 मेगा हर जो नेपालगंज 12 बिलासपुर से ही कार्यक्रम प्रसार होते हैं तो किसी सारे एफएम से। तो साथी जैसे अब हम आप लोगन के यहाँ यही कहा चाहते हैं कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए उत्तर के पुरस्कार जरूर पावा जाए मगर आज के दिन में हम आपका पूरा रक्षाबंधन के गीत सुनेबे कैसे हमारे हिंदू समाज में जो हमारे लाखों करोड़ों हिंदू भाई लोग भी कार्यक्रम का बहुत प्यार प्रेम से सुनत हैं तो हम उनका आज जो प्यारा से जो त्यौहार आवत है भाई बहन के जो कच्चा धागा बांधत है मगर बहुत मोहब्बत के धागा है जन्मों जन्म के बंधन रहते है तो कि वजह से हम आज कार्यक्रम में आपका सब पूरा सदाबहार यानी प्यारा प्यारा भाई बहन के ऊपर के जो रक्षाबंधन के गीत है आज हम गीत सुनेबे। अब आप लोग भी गीत का जो अगर चाह जाए जो गीत अच्छा हुए का आप लोग मैसेज में पठा दिया जाए और क्या कहते हैं और आप फोन करके भी समझ लिया जी कि हमका ये गाना रक्षाबंधन के सुनाई दिया जी भाई बहन के गाना ये बहुत जो त्यौहार प्यारा त्यौहार है तो शुक्रवार के रक्षाबंधन है पुनवासी के और आप लोगन का बीफे के तो हम पूरा कव्वाली सुनेबे कहे से मोहम्मद डे भी बुद्धे के है मगर आपका हम बीफे के पूरा कव्वाली सुनेबे। तो साथी आप लोग नंबर में आवाज़ आए सुनने 84-15-122 के लिए नेपाल के साथी नेपाल से बाहर के साथी 00971-87-4-15-122 के लाइन में आप लोग आवाज आज मौसम भी बाहर बहुत ठंडा ठंडा मौसम है बारिश भी जो सावन के झड़ी गिर रहा है जो बारिश हो रहा है शहर बाजार जंगल माँ देहात माँ गाँव खेत खरिहान माँ हरियाली हरियाली माँ जो ये पानी गिरत है तो बहुत फ़ायदा है तो इस सावन संबंध के जो भैया हर साल अबा सावनवा में राखी के गाना जो है ना चंदा जी तो गाना हम आपका सुनेबे। तो साथी आप क्वेश्चन सुना जाए पहला नंबर में गाना है मेरी पहला गाना वहाँ है इसे समझो ना रेशम के तार भैया इसे समझो ना रेशम के तार भैया मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया। कौन फिल्म हो कौन गायक लोग गाना का गायन है रक्षाबंधन के ऐसे दो नंबर में गाना है मेरी बहना ये राखी का लाद तेरा भैया निभाएगा तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा मेरी बहना ये राखी का लाद तेरा भैया निभाएगा। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुनने के 84-15-122 के लाइन में एकदम जुड़ा जाए और आप मैसेज में भी पठवा जाइए 98-55-96-36 में मैसेज भी भेजा जाइए प्यारा प्यारा जो रक्षाबंधन के गीत है और छुटकरी में लिख के पठवा जी नाम पता ठिकाना जरूर लिख दिया जाए। तो साथी जो आप लोग एकदम तैयार हुआ बैठे हुआ गाओ है और आप लोगन का ये है कि एकदम गाना के मोहब्बत भी है कि हाँ रक्षाबंधन त्यौहार है कितना बाजार में केल मेल खरीद होते है बहुत बहन के लिए भाई लोग उपहार खरीदते हैं बहुत बहन लोग अपने भाई के लिए कलाई में बांधे कारण अच्छा से अच्छा राखी खरीदत है मिठाई खरीदत है हर चीज़ में तो एक भाई बहन की मोहब्बत बहुत भारी होते। तो साथी अब हम पहले सुना जाए पहले प्यारा से गाना भैया हर साल पहले सवनवा में छोटा सा ब्रिक के बाद में

0: हाँ बहनी बसलू तू हमरे परनवा में। खैर बहुत अच्छा सुंदर प्यारा गीत जो रक्षा बंधन के रहा। तो कोई साथी हमरे फोन लाइन में है, उनसे भी बात करे परा।
1: हेलो
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार।
0: आपके आवाज कहाँ से को बोला जाते है?
1: राम खिलावन थारू।
0: राम खिलावन थारू और राम खिलावन जी अपने बर्दिया के हाल चाल बताओ जाए।
1: अरे यहाँ मुसल्लम धार पानी गिरा था।
0: तो पानी तो सावन के झड़ी है, पानी ना गिरी तो हम किसान भाई।
1: पानी तो बहुत बढ़िया गिर गया है।
0: पानी ना गिरी तो हम किसान भाई के अन्न डेहरी में कहाँ पहुँची है कि नहीं
1: है।
0: अब वही इतने दिन पानी नहीं रहा तो पानी के कारण कितना मने नदी नाला कहाँ पानी मांगे गवा कत्ता पूजा पाठ सब कुछ मनावागा पूजा मांग करागा। और हिंदू धर्म में नंगे पांव राप्ती माँ जाए जाए के जल लाए के मने सब कुछ के हिन अपने तरफ से जिका जौन रहा करे तौर बतावा जाए। राम खिलावन जी कार्यक्रम शुरू से सुना जाते।
1: अरे सुने तो हाँ, थोड़ा प्रश्न एक बार फिर बता दो।
0: प्रश्न का रक्षा बंधन जो आप लोगन के जो हमरे हिंदू भाई के रक्षा बंधन है, तो अब हम कार्यक्रम आज सब रक्षा बंधन के ऊपर के चलाए थे ना। कैसे हमका भेदभाव लावे नहीं कहते, जैसे दुनिया में जैसे गंगा जी में भरा है पानी वैसे हम सगरे देशवासी का एक निगाह जानी। हमरे माँ भाव भेद हो तो उतने दिन हम टिकट ना बले कब नहीं फरार हो गए।
1: एक बार कह दे।
0: अच्छा तो कोई सनवा नहीं सुने रहा हूँ।
1: सुने तो मने थोड़ा कंफ्यूज रहे।
0: जैसे पहला नंबर में गाना है ना, पहला गाना है जो आप जो सुना जाई जो भैया मेरे राखी के बंधन ना भैया मेरे राखी के बंधन तू निभाना। पहला नंबर में गाना है भैया मेरे राखी का बंधन तू निभाना है। कौन फिल्म है कौन गायक लोग ये गाना का गायने से। दो नंबर में गाना है मेरी बहना ये राखी का लात तेरा भैया निभाएगा।
1: अरे हमरे ख्याल में तो दोनों कुंदन फिल्म की हुए।
0: कुंदन ठीक है, आपके जो दिल में रहा है बतावागा सही गलत।
1: दोनों गाना कुंदन की हुए।
0: दोनों कुंदन के हुए है ने।
1: आ,
0: और बतावा जाए राम खिलावन जी।
1: सब बढ़िया है, पानी बरसा था बैठे हम।
0: अकेले है कि और कोई है?
1: सब हैं, लड़के हैं पतोहू
0: हैं। सबका हमरे तरफ से रक्षा बंधन के बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार है ना।
1: नमस्कार।
0: और मोहम्मद डे के तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत
1: मोहम्मद
0: मोहम्मद डे बुद्ध के है भी फैसला छोड़ सुख के रक्षा बंधन है। त्योहार है त्योहार दे पूरी दे मिठाई।
1: बुद्ध के मोहम्मद डे
0: है। और शुक्रवार के पुनवासी के रक्षा बंधन है। तो वही कहते कोई तरफ से हलवा पूरी कोई तरफ से यानी जर्दा पलाव का सब तरफ से खाए खूब मिला है नहीं। आयो आयो राम खिलावन जी ना।
1: देखो मौका मिली तो आवाज ही हमरे यहाँ तो है। अब गौड़ी में
0: है नहीं ठीक है, एक दूसरे के साथ देख पड़ते है कि नहीं। तो ले ठीक है राम खिलावन जी कार्यक्रम सुना जाए। नमस्कार
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी हमरे राम खिलावन थारू रहे, बहुत प्यारे श्रोता हैं हमरे, बहुत पुरान श्रोता हैं। जमनी सतपुतिया से कहते पानी मुसवाधार गिरा है। ठीक है पानी न गिरी तो किसान भाई के बच्चे कैसे जी हैं, कैसे अन्न पैदा हुई। कहते बरखा जो साथ दे दे तो कोने के बहाना बहुत है। तो ऐसे किसान हर मेर के सबरी करके बैठा है। तो साथी अब हम चले थे पहले प्यारा से छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ सुना जाई प्यारा से फिर रक्षाबंधन के गाना।
2: आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, वरिष्ठ फिजिसियन तथा मुटु रोग विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विकास नेपाल तेजस्वी हर्ट सेन्टरमा आफ्नो सेवाहरू दैनिक रूपमा प्रदान गरिरहनु भएको यहाँहरूमा जानकारी गराउँदछौँ।
3: उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रल, सुगर, मधुमेह, मुटु दुख्ने, हिँड्दा छाती भारी हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खुट्टा सुनिने, शरीर सुनिने, चक्कर लाग्ने, बेहोस हुने, हर्ट एट्याक, हर्ट ब्लक, मुटुको बाथरोग, मुटुको पेसमेकर हालेको वा हाल्नुपर्ने, एन्जियोप्लास्टी गरेको वा गर्नुपर्ने, बाइपास अपरेसन गरेको वा गर्नुपर्ने, मुटुको भल्भ फेरेको वा फेर्नुपर्ने र रगत पातलो बनाउने औषधि प्रयोग गरिरहेको बिरामीहरूले समयमै सम्पर्क गर्नुहोला।
2: उपलब्ध सेवाहरू
3: ईसीजी, इको, टिएमटी, 24 घन्टे होल्टर, एबिपिएम, ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल र मुटु रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच, रगत सम्बन्धी सम्पूर्ण परीक्षणका साथै सम्पूर्ण प्रकारका जाँचहरू गरिन्छ।
2: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म, दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म, साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म।
3: सम्पर्क नम्बर 081-536-667, 98215-97532। ठेगाना गणेशमान चोक, भेरी अस्पताल जाने बाटो, नेपालगञ्ज।

हाँ तो सुरताई प्यारा से जो आप मूवी सुनागा, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। हाँ तो सुरता आप लोग अपने बहन का ज़रूर याद किया जी, कहे से भाई बहन की मोहब्बत बहुत भारी होते है और बहन के जो याद किया जाए तो अगर बहन का बलावा जी, अगर बहन अपने हंसी खुशी से आई के आपके हाथ में कलाई भी बांधी और दुआ भी दी तो आपका सब शुभ शुभ है, यानी सब फायदे फायदा है। अगर बहन रोई गए तो जानो आपके त्यौहार अच्छा ना हुई, तो बहन का दुख ना दिया जाए। बहन का जैसे भी, अगर बहन आवे वाली नहीं है तो के घरे जाए के जैसे भी कोई कोई ऐसे काम पर जाते तो बहन आए भी नहीं पाओ थे तो के जाए के घरे उके दिल खुशी किया जाए। तो साथ ही ऐसे सुने कैसी 415 से 22 के लाइन में आवाज़ आया, कैसी कार्यक्रम जो आप लोगों की प्यारा

कार्यक्रम है जो आप लोग इनके घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर आप ही के प्रिय रेडियो कृष्ण सार एफ एम नेपाल गंज बारा बिलासपुर बाके से ये बाकी जिला जो कृष्ण सार एफ एम बाकी जिला के जो कृष्ण सार एफ एम चैनल है जो का आप लोग सुना भी जाते देखा भी जाते पूरे विश्व में आप लोग ऑडियो वीडियो सब सुना देखा जाते। तो साथी फ़ोन किया जी जो हम विदेश विदेश से बाहर के साथी हैं नेपाल से बाहर के साथी हैं तो 00970-81-415-122 के लेमा आवाज़ अपने नेपाल के जो अपने अधिराज नेपाल भरन जहाँ भी रह जाए आप सुने 81-415-122 के लेमा आवाज़ आपके नेपाल के कोट अलग है बाहर के कोट अलग है। तो साथी दोनों माँ नंबर किया जाए मैसेज माँ 98-55-96-306 माँ मैसेज भेजा जी मैसेज पठवा जी आपके मैसेज जैसे भी हम लोग पढ़ा जी तो ऐसे मैसेज आएगा है हमारे हाथ माँ मैसेज पठैन है खजुरा गांव पालिका से मैसेज भेजिन है नान बाबू पवना जो पान भंडार से ये लिखी ने सबसे पहले मियाँ साहेब आपका मोहम्मद डे और राखी के त्यौहार जो रक्षाबंधन है दोनों के तरफ से आपका आपके पूरे रेडियो परिवार का सबका बहुत बहुत धन्यवाद है मुबारकबाद है धन्यवाद है आपका भी आनंद बाबू पवना कहने कोई प्यारा से रक्षाबंधन के गीत सुनाए दिया जाए हमका जैसे पवना पान भंडार के चीने जाने वाले सब साथी लोगों का सुना चाहे थे। ऐसे दूसर मैसेज आएगा मैसेज भेजने वाले साथी हैं ये मैसेज भेजे हैं चंद्रवाल यादव जी जो ये दोहा कतार से ये कहने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार इनके नेपाल के ठिकाना जान खजुरा गांव पालिका 4 बठवा माँ है मगर कहने कि हम अपने नेपाल के जितने साथी संगी हैं और घर परिवार माँ जितने हैं सब लोगों का ये रक्षाबंधन के प्यारा से कोई भी मूवी बजा दिया जी तो धन्यवाद है आपका चंदपाल जी जो इतनी दूर से मैसेज भेजागा। तो इसे आप लोग मैसेज फ़ोन करते रहा जी हम आप चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन तरफ

0: toilet pony, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
3: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
2: ए अच्छा, मने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
3: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
2: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
3: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: बीर डेंटल
3: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
4: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
3: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
4: फोन नम्बर 081-32-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङको फाउन्डेसन द्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्ड द्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेशलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगंजमा।
3: विशेषताहरू, दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
5: सम्पर्क गणपति क्लिनिक सुर्खेत रोड नेपालगंज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-0-50-49-451।
6: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

हाँ तो श्रोता इसे समझो ना, रेशम के तार भैया मेरे राखी का मतलब है प्यार भैया। तो सही बात, रेशम के तार ना समझा जाए और बहुत प्यार मोहब्बत के धागा है। तो साथी इसे आप लोग भाई बहन के प्यार बनाए रहा जाए। सुने कैसी 415-122 के लाइन में आवाज आए, अपने मन पसंद के रक्षाबंधन के गीत भी सुना जाए। तो ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर, जो सदर लाइन में है वार्ड नंबर 4 माँ, जहाँ समीर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब कपड़ा सेट हैं वहाँ से। ऐसे हमारे हाथ में मैसेज जाएगा, मैसेज भेजे वाले हैं संगम टेलर से, मैसेज भेजी नहीं लेकिन सबसे पहले मियाँ साहेब आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा दिल से 10 अंगुरी जोर के नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आपके मोहम्मद डे के बहुत बहुत मुबारकबाद, रक्षाबंधन के भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ कृष्णा जी आपका भी, आपके पूरे फैमिली, आपके जितने यार दोस्त दुश्मन सबका हमारे तरफ से भी रक्षाबंधन मोहम्मद डे के तरफ से, प्यारा से त्यौहार के तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कहने गाना हमका सुना दिया जी, मेरी बहना ये राखी का लाद तेरा भैया निभाएगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। ठीक है कृष्णा जी, हम ही गाना आपका ज़रूर सुनेब। तो इसे साथी इनके हैं मोहम्मद अफरोज खान हैं, सुभाष हैं, पूरे स्टाफ का सुनाओ चयन है। और कहने कि मियाँ जी आपका, आपके पूरे रेडियो परिवार का और रेडियो विश्वमा जहाँ तक आपके रेडियो वीडियो सुनत देखत हैं सब साथी लोगन का धन्यवाद है कृष्णा जी। ऐसे दूसर मैसेज है, हाँ तो दूसर मैसेज आएगा मगर साथी अब का करी, 2 बजे के हम टेम चेक के तरफ जाए थे, टेम चेक के बाद में आप लोग आवाज़ ही फोन लाइन में या वो क्या जी, हम आपका प्यारा से गाना सुनेबे, गाना के बाद में हम आप फिर मिला जी फोन के लाइन में जुड़े रहा जी।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जस तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
2: सुना जाए आपका, हम बताई थे आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
1: हरेक सामानको खरिदमा 1,000 देखि 20,000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्षसम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि।
0: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ। स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अगाडि।
1: सम्पर्क 97051148470।
0: सोफा हब नेपालगञ्ज,
1: विश्वासमा नम्बर एक,
0: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
2: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे, बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होता है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
3: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन, उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97 46 11 786 98 224 92 377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक, मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले ये बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हाँ तो सरताई प्यारा से जो गाना सुनागा, मेरी बहना ये राखी का लाद तेरा भैया निभाएगा। हाँ तो हर भाई का निभाव तो जरूरी है, कहे से ये प्यार मोहब्बत के जो त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक बंधन बहुत बहुत बंधन है, जैसे मोहब्बत के बंधन है भाई बहन के। कहते हैं बहन भी खुशी रहते है जब भाई के हाथ में कलाई बांधत है, और भाई भी बहुत खुशी हो जाते है जब अपने बहन से हाथ में राखी बंधावत है कि आज दुनिया में हम भाई बहन सलामत हन। जैसे चांद सूरज जैसे वैसे जानो भाई बहन हन। तो कोई साथी पहले फोन लाइन में उनका स्वागत के लिए देखी को कहाँ से है। नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। और
1: हाँ ठीक है, हम बाकी गांव से मोतीलाल बोली से।
0: मोतीलाल बोलत हो।
1: हाँ
0: और बताओ।
1: सब ठीक है मियाँ जी।
0: त्योहार की तैयारी? त्योहार की तैयारी वायरी कत्ता है?
1: त्योहार तो आवत है, सब सब त्योहार निराज चला आवत है।
0: तो अब सिख हमका लागत है दावत मिली।
1: हाँ क्या है ना
0: कहा कहा थे आप लोगन के माइस।
1: हाँ आज कहा पूछे मैं जी।
0: आप लोगन के माइस कहा थे कि तवाजा कहा थे?
1: आइस कहा थे आइस।
0: हमार तो यही जो कहा थे कि हम यही दिन चले मोतीलाल के आइस खाई जी।
1: हाँ बिल्कुल आ जाओ, स्वागत है आपके।
0: अरे कहा थे वही भैया का छूछी रे तू का को पूछी
1: क्या ना पूछी है। अरे दिल बहुत बड़ा है, बात ना ही है।
0: है ढाई तीन किलो के?
1: हाँ बिल्कुल
0: हमार तो वही 250 ग्राम हुई। तब से दावत तुरंत घरे है हमार।
1: हाँ बिल्कुल स्वागत है, आवाज है पूरा टीम आवाज है, पूरा कितने सारे एफएम जितने परिवार है सब पे आवाज है।
0: अरे तो देखा जी कहा थे जब दावत के दिन बलई हो तब तो ऐबे कर बे भैया।
1: अरे आज से बलाई थे, अब आपका जो है समझ लो कि जिस दिन रक्षाबंधन है मुझे सब कुछ चले आओ।
0: नहीं तो अभी कहे पर कहा था तो ना ठीक है।
1: नहीं कहा के बात नहीं है, हम हूँ कहे लेकिन अब आप है पहले बात छेड़ दिए तो आप से हम वो हो गया आपके मुँह से। और सुबह
0: राखी बांध देवे जनो बहन बन के और का
1: बिल्कुल। अरे बिल्कुल कहा है जब त्योहार है तो जो कुछ करे वाला हो कहा ना करा जी
0: वो हम पहले कुछ पहला नंबर के गाना है इसे समझो ना रेशम के तार भैया कौन फिल्म में कौन गायक गायन है। दूसरा नंबर माँ है मेरी बहना ये राखी का लाद तेरा भैया निभाएगा।
1: एक नंबर के है तिरंगा फिल्म।
0: हाँ
1: हाँ साधना सरगम की आवाज है। और दूसरा नंबर के घर द्वार फिल्म के नाम है घर द्वार। मोहम्मद अजीज मनहर उदास और सुरेश वाडकर तीन जना की आवाज है।
0: ठीक है नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी राय मोतीलाल जी खैर हमरे बहुत पुरान श्रोता हैं तो साथी इसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। सुने 84151 के लाइन में नेपाल के साथी और जी नेपाल से बाहर के साथी 00970-81415-122 के लाइन में और जी सावन के संबंध गीत जो ये रक्षाबंधन है। सावन भी अब ख़त्म होने वाला है, गते से तो सावन चालू है मगर हमारे पाक तिथि से अभी सावन नए है। कैसे जैसे हमारे हिंदू मुस्लिम के तिथि एक बराबर चलत है, जैसे 12 रबी अव्वल बुध के है 12 तारीख के और फिर विफे के 13 सुख के 14 पूरी तो 14 के पूर्व पूर्णवासी है उस दिन रक्षाबंधन है। तो साथी रक्षाबंधन और मोहम्मद डे बहुत हंसी खुशी के साथ मनावा जाई, हो हल्ला ना किया जाई, एक दूसरे का अपने भाई समझ के साथ दिया जाई और मिल चुल के हर त्यौहार में हाथ बांटा जाई। कैसे भाईचारा भाईचारा होते कहते बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ये नेपाल सुंदर देश किसी के गुलाम नहीं हुआ ना होएगा, ऐसे हम आप सब कोई मिलके एक साथ चले। कहते अंग से अंग मिला लो और दूसरे का साथ जरूर ले लो। तो साथी एक दूसरे के साथ लिया जाए, भेदभाव कुछ ना लावा जी। तब हम चले थे फिर ब्रिक के तरफ, ब्रिक के बाद में सुना जी फिर प्यारा से रक्षाबंधन की मूवी के बाद में हम आप फिर मिले।
2: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग। शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ, झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ, बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ, सब धेरै डराएका हुन्छन्, तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ। शर्माजीले श्री एफई 550D ले बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन, अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ। अनि वर्षौँ पछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
3: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
4: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
4: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
3: ल, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
5: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बीबीएस तथा एसीसीए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
3: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98 5 80 36 577, 98 5 80 28 195 र 98 5 80 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार। आज म एकदम खुसी छु।
5: हैन, आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त?
3: आज मैले रेडियो कृष्णसारमा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने, मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो, म त भुल्ली नै बाबालाई भनेर जान्छु।
5: ए हो र, ल ल भन न त, तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ, हामी पनि जानौ।
3: ल सुन, त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जीएम कलेजको बीबीएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू, पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, एजुकेसनल टुर, सिए काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन, मोटिभेसनल क्लास, आइसिटी क्लास, एसी क्लासरुम, इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट, क्रिकेट मैदान, बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप, क्यारियर काउन्सिलिङ, जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन्। यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यहीँ जाने निर्णय गरेँ। अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो?
5: हो रहेछ, एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त। अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज जीएम कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु।
3: ल सुन, त्यसो भए 98 5 80 40 388, 98 0 45 0 86 26 र 98 5 80 85 0 40 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है।
5: ल ल हुन्छ हुन्छ ल।
6: नमस्ते दाई।
7: नमस्ते नमस्ते, धेरै दिनपछि देख्यौ त भाइ।
6: विदेश नाटेको दाई, प्रोसेस गर्दै थिए, अहिले भर्खरै एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट स्वास्थ्य जाँच गराएर आएको।
7: समयमै सही ठाउँमा गएछौ त, अब जहाँ पाए त्यही स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा त ठगिने सम्भावना पनि त हुन्छ नि।
8: तपाईँ पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने नक्कली स्वास्थ्य परीक्षणदेखि सावधान।
9: सुदूरपश्चिम कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशको श्रम मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरानो नेपालगञ्जमा रहेको एभरेस्ट इन्टरनेसनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरमा आउनुहोस्। ग्यारेन्टीका साथ स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्। अनलाइन स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
3: हाम्रा विशेषताहरू
5: वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको ग्यारेन्टीका साथ अनलाइन मेडिकल गरिन्छ।
3: प्रत्येक दिन पेट, छाती, मुटु तथा सुगर थाइराइड रोग विशेषज्ञबाट ओपिडी सेवा,
5: महिला तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार सेवाको साथै निसन्तान बाझोपन सम्बन्धी नियमित उपचार तथा परामर्श सेवा।
3: प्रत्येक महिनाको तेस्रो बुधबार सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुनिल चौधरीबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
5: प्रत्येक महिना हार्दिक आइबीएफ काठमाडौँका निसन्तान बाझोपन महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर अर्चना साक्यबाट उपचार तथा परामर्श सेवा।
3: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, इको कार्डियोग्राम, इको ईसीजी, डिजिटल एक्सरे सेवा,
5: अत्याधुनिक एआई प्रविधि जडित 4D 5D भएको भिडियो एक्सरे सेवा।
3: प्रत्येक शनिबार प्रयोगशाला सेवामा 40% देखि 50% सम्म विशेष छुट सेवा।
5: प्रबन्ध निर्देशक एभरेस्ट इन्टरनेशनल पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रहरी तालिम केन्द्रको पश्चिमपट्टि एनआइसी एसिया ब्याङ्क भएको भवनको तेस्रो तल्ला कारकान्तो चोक नेपालगञ्ज।
3: सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-274 र 98-580-21-822।
10: ओहो सर, कार्यक्रमको सबै तयारी त भयो तर कहाँ गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेन, के गर्ने होला?
11: किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, न्यू कैलाश दर्शन होटल छँदैछ नि।
10: कस्तो होटेल हो कुन्नी? हामीले खोजेको सुविधाहरू छ कि छैन?
11: किन नहुनु, ल सुन्नुहोस्, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका राजा गेटदेखि 500 मिटर पूर्व रहेको यस होटलमा त गाडी पार्किङको सुविधा भएको, एसी रुमको व्यवस्था भएको, क्याबिन सहितको रेस्टुरेन्ट भएको, कार्यक्रमका लागि हल अनि अर्डर अनुसार सुपथ मूल्यमा खानेकुराको साथै बसोबास पनि व्यवस्था रहेको छ। एनिभर्सरी, बर्थडे तथा विशेष पार्टीको अवसरमा 15% विशेष छुटको पनि व्यवस्था छ।
10: यति सुविधा पाएपछि त अब हामी ढुक्क भएर न्यू कैलाश दर्शन होटलमै कार्यक्रम गर्नेछौँ।
11: हजुर, न्यू कैलाश दर्शन होटल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20, राजा। सम्पर्क फोन नम्बर 98-487-56-466।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580-30479 र 98480-21380।
3: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
4: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैली चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
3: अच्छा, माने अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
4: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ एनआईसीयू, पीआईसीयू, आईसीयू, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेरे के उपचार भी उपलब्ध है।
3: अस है तो अम्मा कहीं आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
4: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: 719 9480 22229 र 9865 22229।
1: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
2: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथेन गर्भपतन परिवार नियोजन के साधन बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
1: विशेष सुविधा
2: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
3: देर न कीन जाए, आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-530-598।
4: सुविसु अपर्च्युनिटी 1900 वार्षिक उत्सव को अवसर में प्रस्तुत सुविसु अपर्च्युनिटी। यस योजना अंतर्गत ग्राहक 25 MBPS इंटरनेट र क्लियर टीवी को फुल HD पैकेज प्रति महीना मात्र रु 1040 में 65 भन्दा बड़ी HD चैनल भएको क्लियर टीवी को पैकेज प्रति महीना रु 221 में साथ ही दामी म्यूजिक को प्रीमियम पैकेज 3 महीना का लागि निःशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुने छन्। थप जानकारी का लागि www.subisu.net.np। सुबिसु
5: पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमारे पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमारे पिया।
6: रेडियो कृष्णसार FM 94 MHz कृष्णसार जस तेज।

हाँ तो सरताई छोटा सा व्यापारी विज्ञापन प्यारा से गाना के बाद में आप लोगन का फिर से स्वागत है। तो साथी पहले नंबर में है इसे समझो ना रेशम का तार भैया, राखी का मतलब है प्यार भैया, कौन फिल्म है कौन गायक लोग गाना का गायन है जो रक्षाबंधन के। इसे दो नंबर में गाना है मेरी बहना ये राखी का लाद तेरा भैया निभाएगा तुझे दिल से कभी ना बुलाएगा। हाँ कौन फिल्म हुए कौन गायक लोग ही गाना का सिंगर लोग गायन है। तो साथी दोनों का एकदम सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट देवे जो आप लोगन के माना जाना हुआ ज्योति टेलर सदर लाइन में है जहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। ऐसे मैसेज भेजे नहीं मेरे जो मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये छंगा पान वाले जो ये धम्बोजी बांके से जो मैसेज भेजे नहीं शिव मंदिर के ठीक सामने से, इन्हों कहने कि सर्वप्रथम संचालक मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार और मोहम्मद डे और जो और जो हमरे पुनवासी के जो शुक्रवार के हमरे जो रक्षाबंधन है दोनों के त्यौहार के तरफ से आपका पूरे स्टाफ का बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत मुबारकबाद दी थे, धन्यवाद है आपका शंगा जी। आपका भी आपके पूरे घर परिवार साथी यार दोस्त साथी संगी घर और पूरे सब साथी लोगन का हम भी अपने तहे दिल से शुभकामना मुबारकबाद देते हैं त्यौहार के कारण। तो ये कहीं कोई प्यारा से रक्षाबंधन गीत गाय सुना दिया जाए। ऐसे दोसर मैसेज भेजे वाले हैं साथी ये लिखी नहीं है कि राम कुमार जो मोबाइल सेंटर जो बागेश्वरी मोड़ पर जाए वाले रास्ता में जो वहाँ से मैसेज भेजे नहीं है राम कुमार जी, ये कहने कि मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। मियाँ जी आपके कार्यक्रम के हम बहुत नियमित श्रोता हैं, आपके कार्यक्रम जब आवत है तो हम पहले से रेडियो ट्यून करके बैठ जाते हैं, धन्यवाद है। कहने हम हमरे जितने वारकर लोग यानी साथी संगी और जितने ग्राहक वर्ग और कस्टमर आवत हैं सब लोग आपके कार्यक्रम का बहुत प्यार प्रेम के साथ में सुनत हैं और हम अपने ये जो रक्षाबंधन गीत है जो कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी हम अपने घर परिवार का सुनाओ चाहित है और हमका राम कुमार के चिन्ह जाने ले सब लोगन का। तो राम कुमार जी गाना जो आपकी फरमाइश के रहे पूरे विश्व में जय गाना और ये ऑडियो वीडियो में दोनों जात है का आप लोग सुना जाए। इसे रहीस खान जो ये घरवाई टूल से जो मैसेज भेजी ने कहने कि मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम ही कहने कोई प्यारा से हमों का गीत सुना दिया जी हमका रहीस कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते। तो साथी ऐसे कोई हमरे फोन लाइन में आए रहें चले गए आवे जाए तो इससे कर्म जारी रहते। तो साथी ऐसे नंबर में जुड़ा जाए 081415 122 के लाइन में आ जाए हमारे स्टूडियो के घड़ी में 2:51 हो गए हैं। तो साथी अब हम चले थे पहले सुना जाए प्यारा से गाना, गाना के बाद में हम आपसे विदाई लेवे फोन और मैसेज आपके ना पढ़ पे हुए।

हाँ तो साथी, प्यारा से गीत के साथ साथ में अब हमका विदा ले के समय आएगा। तो साथी अब हम फोन भी ना ले पेबे, मैसेज भी ना पढ़ पेबे, समय भी एकदम बलवान होते, समय कहते भागो जल्दी मियाँ जी, अपने दूसरे का भी टाइम देख पड़ा। तो साथी अब हम आज के हमरे फोन करे वाले साथी राम खिलावन थारू ना है, जो जमनी सतपुतिया बर्दिया से फोन करना है, गलत बताना है। ऐसे हमरे मोतीलाल जी जो बाकी गांव से जो फोन करना है वो सही बताना है। तो साथी आज के विजेता हमरे मोतीलाल जी हैं,

हाँ तो साथी जो इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। फिल्म तिरंगा हो और गायकार रहा है साधना सरगम, बहुत सही बताएं ऐसे। दुई नंबर में गाना रहा है घर द्वार फिल्म रहा है, हाँ गाना के बोल रहा है मेरी बहना ये राखी का लाद तेरा भैया निभाएगा। गायक का तो पीछे और तमाम साथी लग गए ना है, मगर हाँ जो गायककार रहा है जो एकदम निजी गायककार सुरेश वाटकर जी, तो आज के प्रोग्राम में जो विजेता भे मोतीलाल जी उनका बहुत ढेर से गर्व बधाई। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के, उनके पूरे स्टाफ का बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम का देश दुनिया में ऑडियो वीडियो दोनों का पठन हमरे चंदा जी, उनका भी बहुत बहुत ही पर्व जो मोहम्मद डे वही का कहते हैं जो हमरे रक्षाबंधन आवत है, एक तरफ से चंदा जी का भी बहुत ढेर से कर बधाई शुभकामना के साथ माँ उनका दी थे। कहते कहे जो दिल लगाए के आवाज़ का सब पूरा ऑडियो वीडियो का पूरे दुनिया में ही विश्व के कोने कोने में पहुँचाए नहीं, प्रकाश के जैसे जैसे सूरज निकला है सहित देखो सब कहूँ घाम है तैसे ये आवाज़ सब कहूँ है पूरे विश्व में, तो उनका भी दिल से धन्यवाद दी थे। प्यारा से गाना जो रक्षाबंधन के छोड़ते हैं हम प्यारे श्रोता लोगन से अपने दिल से अस्सलाम वालेकुम नमस्कार करते हैं। आज के कार्यक्रम से विदा ली थे, टाटा बाय बाय।

0: रंगाउ मेरो एवरेस्ट।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस्ट सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
3: नींद आए हमको जन
1: सोना। बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथन लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में यहाँ छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत है। साथन कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
4: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848206697 9858023697 और 9804483697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
5: Back to back.
6: Hindi song on.
5: Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै देश।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी